अरे तो दामा ही जाए तो मुंछुनो का खेला वही खरवासा का नार के वाहे नहीं खरवासा का वरना तो रोबेर्टो कालुइसिंग को रहने विंसिंग को मिनो